0: भगवान तुम्हारे भी रक्षा।
1: यू एंड योर इंडियन भगवान, इंडियन स्टाइल।

क्या जरा अपने गुरु से ठीक से सीख लूं, फिर मैं आई एम सॉरी माय गुड फ्रेंड लेट मी लर्न इट प्रॉपरली फ्रॉम माय गुरु देन आई विल टीच यू।